मम चैन दोई चागे होले जुबे ना उले कर तुक उगर हल्ल द होरा तोल दान वदंग जुबे ने उदरे नरे सिंह सिन्ने सुलर उदशर्दे बलजे

त्यादवा धलवल्ले वाई उलगर लिंठावा नाद उतने वल्सिन थायसे गोंजो पावा योगने वाई उधर सारे वर्तल बदलो ना संगर नी दा पता इतनो चोचलो बुबुद हुदी बेबस पुहार चेरे ते नाचनुगा वाले हगासने दिसो हाई